0: お前ね、ポジポジポジ打って倒ってやれ。ちょちょちょちょちょちょ、
1: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
0: देख देख देख, अरे अरे, और ये बाप रे बाप, इस स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो।
1: तू चारी भी कल इखवाले लू का,
0: हाँ? अरे अरे, ए ए,
1: आ जिगर, पलट।